0: पहिलका बेर ग्याल्बलम प्रविधि से बनल आल्मोनियम कोटेड सादा और रंगीन जस्ता पाता खुला जुरा कलर और से तीन गुणा बेसी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक आठ टिकाऊ है।
1: तीन गुणा बेसी टिके
0: हुला छे त और कठिने खोजबे।

लिया नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ गुड।

लगे नहीं तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव तेरी सभी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर से बना रहा हूँ, बता रहा हूँ तुझे मोदी पसंद है, मैं हिंदी खाने से बना रहा हूँ, सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी क्या अब भी

प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे खाओ तेरी फिर भी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं सिर्फ बना रहा हूँ, मगर मेरी बता रहा हूँ दिन बॉडी पसंद है, मैं हिंदी खाने से बता रहा हूँ, दुनिया में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ।

0: হয়তো কিনতে কপি কলম
1: উজারে দেন না মতো সুজান
0: म दादालाई पैसा पठाइदिनु भन्छु आज अनि किनमलाई
2: म दबाईले तिमी घरमै बस्छ म घाँस काटेर आउँछु है
3: स्कुल
1: जान
3: उसको बाबा बिक्नु भएको छ